समय ही ग्वाल को ब्रजवासियों एवरी ग्वाल दे दे आईज स्टार्ट अ फ्लड बिकॉज दे नो व्हेन ही लीव्स नेवर विल दे एवर कम बैक एंड सी हिम लाइक दिस अगेन.

उस पूरी कैसे को शोभा स्फटिक मणि को रहासन को घरों को बने रहे हैं. सो ही वांट्स टू सी इट द ब्यूटी एंड द स्प्लेंडर द जेम्स फॉर द पैलेसेस एंड सो फॉर्थ. सो दे लीव एंड अक्रूर लीव्स हिम बार बार मित्र को संगम मथुरा को बीच बजरा को समय वसुदेव को कृष्ण नंदन बदेव को निकल है. द होल ऑफ मथुरा रिसीव्स न्यूज दैट द सन्स ऑफ नंद आर हियर. इनको देख काको पूरी को बहुत श्री दौड़ आई है. बहुत की श्री देखने इच्छा छे माला पोत चढ़ गई और वो दे एंड दे हर्ड ऑफ द कमिंग ऑफ द लॉर्ड व्हेन ही स्टार्टेड टू वॉक थ्रू दिस लेन्स ऑफ मथुरा. दे लेफ्ट व्हाटएवर दे वर डूइंग एंड दे रन टू हिम. पहने को कहले गए हाथ गहन पाव को पवन चले आए हैं जस्ट टू सी द इंप्रेशन ऑफ द फुटप्रिंट दैट वुड बी लेफ्ट. एज अ beautiful verse that I learned from my guru that came from this Bhagavad Dheya Sada Paribhavagnam Abhishta Doham Tirtas Padam Shiva Vidanshya Nutam Sharanyam.

0: Bhagavat, of course. The feet that is worshipped by Brahma, Vishnu. The feet that contains washing of his feet is equivalent to visiting all the places of pilgrimage. Pranatapala bhava vipotam. It is to that feet of the Lord that I offer. So they came out, everyone came to see, of course, Mathura.
1: कोई कोई उत्तर वाले को अधियो पहने लगे हाथ को गहने पावन हो एक पाव के गहने पहने कर आए के एक स्त्री एक कान में कर्णफूल some of them putting now putting in flowers mala in the hair fixing themselves and when they hear they just drop everything to go and do what to get darshan of bhagwan sri krishna to see whom to see of course the divine lord sukadev bole he parikshit sukadev ji bole हे कुलभूषण परीक्षित ओ सेवियर ऑफ योर रेस इसके अपरंत सुख देने वाले भगवान श्री कृष्णचंद्र राज मार्ग बजारे आकर ग्रहण के चंदन पात्र को शोभमान है सो ही कम्स
0: एंड व्हेन ही वॉक्स इन टू द मार्केट स्क्वेयर इट्स लाइक अ बाजार देयर दे हैव डिफरेंट पर्संस सेलिंग डिफरेंट थिंग्स एंड एवरीबॉडीज आईज इज cast on him. There's a beautiful bhajan that we sing. We sometimes sing, or sometimes you hear.
1: Jo tum todo piya, main nahi todunge. To suprit tod Krishna, kaun sang jo dunga.

0: इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के वचन से चाणूर मुष्टिक तोशल कंक सन एवरीवन कोवल्य पीत ग्रेट एलिफेंट टू डिस्ट्रॉय हिम भगवान मेड शॉर्ट द वर्क ऑफ कोर्स ऑफ कोवल्य पीत एंड देन चाणूर एंड मुष्टिक टू ग्रेट वंस कम्स कंस डिस्पैचेस दोस टू डिस्ट्रॉय द लॉर्ड बलदेव के बालक ही नहीं है दे When Chanul sees Baldev, Balram, he says, you are a child. Kishore ko nahi hai, this is, you are very young, but somebody says, no, he is not Kishore, misjudge him by what he appears to be. Isliya hamari sangh tu kasne, and like this, Shukadev Jol bole, hey, Bharata Varsha Praja Parikshit, is prakar nishai sankar kar nilambat pitambat bacho ko naag khetame tokan. This Balram, who was of fair color, pitambar, adorned with beautiful clothing. He goes to Chanur. But Rohini Nandan Balram ji ko haath ko haath paav se jeetne lage. And they struggle. Bhagwan, of course, Balram ji makes short and destroys Mushtik and Chanur. Dharma vikram hasye dhram bhavahe yatanche yakachit न सभाम प्रविष्ट प्रज्ञा सदोषमान स्मरण अब्रोहम विपन्न प्रज्ञा न प्रेलकः विवेक पुरुष ऐसे हो गए व्हेन एवरीबॉडी हु वाज गार्डेड इन द एम्फीथिएटर नाउ वेकन्स अरेंज्ड ऑल ऑफ दिस ग्रेट रेसलिंग टू टेक प्लेस दिस बैटल दैट विल टेक प्लेस कवि दे ऑल एवरीबॉडी सैट देयर इस गार्डन के एंड दे सॉ द यूथफुल एज ऑफ श्री कृष्ण एंड बलराम दे इस गार्डन सभा को बैत तो उचित नहीं है धर्म को नाश होते हैं दे बिगिन टू शेयर व्यूज वन ऑफ देम सेज एनी टाइम वी सिट इन अ प्लेस वेयर अधर्म टेक्स प्लेस एंड वी स्टे क्वाइट एंड वी डोंट से एनीथिंग वी आर गिल्टी ऑफ अ धर्म एज वेल और विवेक पुरुष को ऐसा सभा में जाने योग्य है क्योंकि दोष स्मरण को बात को जाकर इफ वी सिट एंड वी सी यू रॉन्ग डूइंग एंड वी से नथिंग वी गेट फॉल्ट बात को जाने को चुप बैठे रहते वी स्टे क्वाइट एंड वी सिट डाउन वी डोंट से एनीथिंग वी आर गिल्टी ऑफ कमिटिंग दिस सिन एज वेल और द क्राइम ऑल्दो वी सिट एंड विटनेस इट किसी के झूठे सच्चे को दोष लगे हैं वेयर वी सी फॉल्सहुड बीइंग अटर्ड एंड वी से नथिंग दिस इज आल्सो कंसीडर्ड दोष फॉल्ट आल्सो कम्स हियर अथवा हम किसी की भली जान से ऐसे तो है दोष मांगे को कारण के सभा में वेयर वी सी ऑफ कोर्स Advantage, persons are being advantaged and we say nothing. This of course, dosh, fault. Satya bolna dukh nahi hota hai. But if you speak the truth, no unhappiness comes to such. And the gopis of course, the ladies of Mathura, they sit, Kans sees all of this and all of them start to fall one by one. Srishta Mara Deleya, one by one Bhagwan begins to destroy them. चानुर मुष्टिक कुशल तोशल इत्यादि मुख को मच्छल मार गए हैं एवरीवन दैट केम अक्रॉस ऑफ कोर्स भगवान वुड हैव ब्रॉट अबाउट देयर डिमाइस जब जब बड़े मल कर मार गए भाग भोग वंशे राजा कंस को नगर बंद कर दिया है और क्रोधित होकर कहने कुतुल माग वसुदेव पुत्र पूरे से निकल दो सेंस नरसेस डिस्ट्रॉय हिम Take his the sons of Vasudev. They are the cause, of course, of my death. Ugrasen, pita ko chaapi sagun paksha hai. He who enslaved even his own father, source of great pain to his family, and performer of adharma, dhanchin ho gaye. He, when seeing everyone, his whole world crumbling around him, he gets up, grabs sword in hand, aur krodhit ho. अब यह भगवान श्री कृष्ण चंद्र धीरे से उच्चे मंच चढ़े हैं तब भैरव अभिमान कंस बट इवन बिफोर श्री कृष्ण डिस्ट्रॉयड हिम अभिमान को कंस चेता हिज प्राइड हिज अभिमान किल्ड हिम इवन बिफोर द लॉर्ड वॉक्ड एंड दिस इज वेयर ऑफ कोर्स भगवान गार्ड्स अस दैट मस्ट दिस ईगो मस्ट नेवर एवर इंपॉर्टेंट बट नॉट अनकंट्रोल्ड भगवान टॉक्स अबाउट द अंतकार माइंड बुद्धि चित चित मानस बुद्धि चित अहंकार स्वलंतकार अवर माइंड द बुद्धि दैट व्हिच सिफ्ट्स एंड नोज राइट फ्रॉम रॉन्ग द चित दैट व्हिच एक्ट्स व्हिच कंटेन्स
1: link between this life and the previous experiences, and the ahankar, that which drives desires. Bhagavan says, he was destroyed even before meeting with the Lord. तलवार को ग्रहण कर हाथ के आकाश में जैसे शिरा को पक्ष करते उस प्रकार बाई बाई और जल्दी करने वाले तेज वाले श्री कृष्ण चंद्र ही गोज टू भगवान श्री कृष्ण एंड व्हेन ही रशेस फॉर टू द लॉर्ड मूविंग ही मूव्स फ्रॉम वन साइड टू द नेक्स्ट परीक्षित तक गरुड़ जैसे सांप को पकड़े हैं जस्ट लाइक गरुड़ ग्रैब्स ऑन टू अ सर्पेंट पकड़े हो लिए उसके तथा केश पकड़ा भगवान grabs him by the top of the head और दंगमी and the crown falls off ऊपर को पाव जगत के आश्रय और स्वतंत्र काल में भगवान स्वयं मृत पड़े केश पकड़ने का रहे हैं कंस देव को यश पकड़े हैं इसने उसका बदल दिया and in a moment in an instant of course जैसे सिंह को हाथी के खींचते हैं just as a lion pounces on an elephant that attacks it so Sri Krishna of course pounds upon Kamsa. The moment that he is destroyed from Sampardi Harsham Bhurisham, Bhagwan Jagat ke mrit ke Kams ko prithvi ghate se. The moment that Kams is killed and he falls upon God. Samay samasta prajabare ha ha ha rishabde. Kams prati nam chale alaan ho. From the heavenly agents, the devatas of course. Chai Krishna upar phulo ko varsh karine gaye. Sri ke nitya karine lage. और महाराज के कृष्णचंद्र भगवान

0: 92.7 FM.
1: नजरिया लो भाई भी हो जाए भी हो जाए मन तीर ची अरे मन
0: Ricky Ramlagan with you, and it's your Sundar Sapna, 102.7 FM.

आगे है, कोई पीछे है, कोई छत के ऊपर है तो कोई नीचे है. Now what are they up to and what am I supposed to do?

चढ़ गया। लवली आईज, लवली स्माइल, लवली लुक्स, लवली स्टाइल। अरे यार अपू तो लड़की के पीछे पीछे पड़ेगा, मरना है कोई बात नहीं मरेगा।

0: 102.7 FM, आपका धर्म आपका स्टेशन रेडियो जागृति।
1: सुनो और गौर से सुनो। अरे पहले तालियां तो बजाओ। आज रात का मैं आखिरी गाना गा रहा हूँ और गाने में ये कहना चाहता हूँ कि दुनिया में खुश रहना हो तो मानो मेरी बात।

अरे कुछ तो बोल ओ मेरी बेबी डॉल आया ना अरे कुछ तो बोल दिल की बात मेरे दिल की बात मेरे दिल की बात सुन क्या दिल की बात मेरे दिल की बात मेरे दिल की बात सुन क्या।

में हाथ डाल ऐ गुल चेहरा परी जमाल मुद्दत से दिल उदार दादा दास है तेरे होठों की प्यास है ऐ दिल पर मेरे लब पर कब छलकेगा तेरे लब का जा जा जा, जा।

0: से क्रिसमस के बाद आज ही गाना सुना तुम्हारा। ये लो नोटा। अरे इस घर में बहुत कुछ है, बादाम, पिस्ता, काजू, गर्मा गर्म समोसे।
1: मैं इस घर का नमक नहीं खाऊंगा।
0: अरे नमक नहीं खाओगे तो मत खा। इस घर में बहुत कुछ है, केक भी है, हलवा, बादाम।